0: and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
2: यू मीन सबटल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
2: एक बार आजमाइए जरूर सबटल ट्रेवल.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
3: कॉल सबटल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
4: Alif.

0: Those who were arrogant will say to those who were oppressed,
1: तारिक हलाल ने इस अजान को स्पॉन्सर करके सदकाए जारिया कमाया है। दुआ है कि इनके इस नेक फेल से इनकी दीन और दुनिया में भलाई हो। विजिट कीजिए तारिक हलाल.com।

0: तारिक हलाल ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ऑन tarikhalal.com और घर बैठे ताजा मीट हासिल कीजिए.
1: This is Laika Radio.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
2: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
3: यू मीन सफ्टल ट्रेवल?
2: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
3: एक बार आजमाइए जरूर सफ्टल ट्रेवल.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
3: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
4: कॉल सफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: In the name of Allah, the entirely merciful, the especially merciful.

0: मोहब्बत की दास्तां तुमसे तुम तक हर रोज रात 8 बजे आपके अपने जी टीवी HD पर।
1: ये है लाइका गोल्ड।

0: मैं हूं इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक.
1: Kickstart your day the right way with Brasco on Leica Radio.

लाइका रेडियो पंजाबी लाइका रेडियो मोबाइल ऐप ते लाइका रेडियो .com ते एलेक्सा प्ले लाइका रेडियो पंजाबी पंजाबी बॉलीवुड्स बिगेस्ट 90 सॉन्ग्स नॉन स्टॉप।

0: पास में आ, जरा ढोल बजा और मेरे नाल तू विसल बजा। ऐसी होती है लत लग जाना और सुबह ही सुबह कहते हैं चाय की लत, ओ माय गॉड। मुस्कुराइए और चाय पीजिए, क्या सरे सारी की सारी दुनिया के गम आपके हैं।
1: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
0: भीगी भीगी मगर हाँ शायद थोड़ी सी गुलाबी सुबह।

0: रेडियो। क्या बात है भाई, सुबह सुबह ताबिश कहाँ से ढूंढ के लाए हो ये इतनी दूर की घड़ी। और श्रीमान की आवाज का ये पंजाबी सॉन्ग था, मुझे याद है आज से कोई 2 बरस पहले मैंने ही अपने प्रोग्राम में आपके लिए प्ले किया था। और अदनान ने कहा मेरा फेवरेट पंजाबी सॉन्ग ताबिश भाई, सुबह ही सुबह तुम इतनी लकी कैसे हो सकते हो कि सुबह ही सुबह तुम्हारी पसंद का सॉन्ग लग जाए। और जरीन जा रही है जी, पेरेंट्स मीटिंग है, अब नहीं सुन पाएंगी, लेकिन मैं आपको बता चुका हूँ। और अच्छी सी बात पहले कर लेते हैं, काम की बात, बाकी बातें तो होती रहेंगी। लाइक रेडियो के किसी भी प्रेजेंटर के आपको प्रोग्राम को, शो को आप दोबारा सुन सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है, अगर आपने हमारी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर रखा है, लाइक रेडियो की मोबाइल ऐप likeradio.com पे, तो वहाँ पे लिसन लाइव भी होता है और लिसन बैक भी होता है। हाँ चलिए जी, बाकी बातें होंगी बाद में और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: हाँ जी, करेंसी क्रिएट दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में आज बरतानवी पाउंड की कीमत अमेरिकन डॉलर 1.34, इंडियन रुपीज में 128.71, पाकिस्तानी रुपीज में 375.59, बांग्लादेशी टका 166.10, श्रीलंकन रुपीज 448.11 और अफगानी रुपीज 83.49।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. This is LIKA Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. LIKA Radio. Holiday breaks are brought to you by South All Travel.
0: हाँ जी, हॉलीडे ब्रेक लीजिए और गर्मियों की छुट्टियों में जाइए कहीं भी दुनिया भर में, या खासतौर पे यूरोप कंट्रीज में, इंक्लूड्स फ्लाइट्स और होटल्स होंगे, लेकिन टर्म्स कंडीशंस अप्लाई होंगी। नंबर इनका है जी 02085485748410।
1: Holiday breaks were brought to you by South All Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. This is LIKA Radio News Update.
0: और अब मिड मॉर्निंग शो में उर्दू की खास खास हेडलाइंस। ट्रंप ने नेतन्याहू को मुतालबात ना मानने पर जेल भेजने की धमकी दे दी है। और ईरान के खिलाफ दोबारा जंग करें या ना करें, ट्रंप ने बता दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात में इस्लामी नए साल के मौके पर आम तातील का ऐलान। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान की अस्करी पोजीशन पहले से ज्यादा मजबूत हुई है। गजा पर ताजा इसराइली फिजाई हमले, 9 फलस्तीनी शहीद हो गए। और भारत में आईटी कंपनी रातों रात बंद होने से 700 मुलाजमीन बेरोजगार हो गए। अमेरिका में 17 साल हमला पार्टर की हलाकत का इल्जाम, गैर कानूनी भारतीय शेरी गिरफ्तार। और ईंधन और बिजली की तलब में रिकॉर्ड इजाफा, जंगी असरात ने ईरानी हुकूमत की मुश्किलात बढ़ा दी। और रूसी शहर समरपोल पर यूक्रेन का हमला, 3 अफराद हलाक हो गए। तो ये तो थी उर्दू की चंद खास खास हेडलाइंस। मजीद अपडेट जानने के लिए सुनते रहिए लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: द लेटेस्ट गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, योर डिजिटल ग्रोथ पार्टनर। दिस इज लाइक रेडियो।
0: जी हाँ जी, सोने का भाव हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमतें 106.45 पेनिया, 106.45 पेंस, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव आज भी कल की तरह 40,100 रुपए।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartihanks.com।
2: Like our radio.
3: Cinderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre World Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Cinderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click riffgotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Cinderella goes back into the Bollywoods. Radio partner, LIKA Radio.
4: Z105.
1: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Like Our Radio.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
7: Must be won.
8: Must be won.
9: Must be won.
10: Must be won.
6: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
11: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan. Drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
1: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. This is the Leica Radio Network. You heard. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk.
12: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

जानेमन जानेमन आशा भोसले थी और फिल्म का नाम था कहो ना प्यार है। तो लिहाजा अब ऐसा है कि प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं रबी जलील के उस बाबरकत नाम से जो मेरे और आपके दिलों के बेहद खूब जानता है। और आज की तारीख यानी 4 जून और हमारी एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी लिस्टनर है जिनकी आज बर्थडे है भाई।

हाँ जी, हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम लाइक रेडियो गेटर मैनचेस्टर। हमारी बहुत अच्छी सी लिसनर्स हैं, नाम उनका नोरीन है मगर मैं उन्हें प्यार से नूर कहता हूँ। सेंट हेलेन में हमें सुनती हैं रोजाना। आज उनकी बर्थडे है।

0: सुना दूंगा।
1: आए, ख्वाबों को हकीकत अल्लाह पाक बनाएगा। जीती रहिए। और हमारी डायरी के पन्ने पे एक बहुत बड़ा भारत का नाम लिखा है, एसपी बाला सुब्रमण्यम, उनकी बर्थडे लिखी है मेरी डायरी के पन्ने पे। और एक मेरे और लिसनर हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, जल्दी आ जाइए शिराज भाई, वरना आपकी एब्सेंट लग जाएगी। हैप्पी बर्थडे टू यू नूर, तुम्हारे नाम ये एसपी बाला का गाना।

0: बताइए हम आपके हैं कौन। एसपी बाला सा प्रीमियम, बड़ी खूबसूरत आवाज के सिंगर थे, प्लेबैक सिंगर, और मुझे बहुत पसंद थे। कहते हैं तू हर बार मुझसे रूठेगी तो मना लूंगा, तू हजार बार भी रूठेगी तो मना लूंगा, मगर देख मोहब्बत में शामिल कोई तीसरा ना हो।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI वालों का पैगाम, कहते हैं कि अगर आप ऑनलाइन या इनकी किसी ब्रांच में जाके या इनकी मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लें, यूनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप के जरिए आज के रेट दे रहे हैं ये ब्रिटिश पाउंड के बदले में भारतीय रुपीज 127.75 रुपए।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। लाइक अ रेडियो।
0: खुशामदीद, कहते हैं मैंने सुबह एक बात आपसे कही थी और कि चाय पिए और मुस्कुराएं। ये आज मैंने एक अपना पिक्चर जो है अपलोड की थी आपके लिए कि जरा देखिएगा और सोचिएगा कि दुनिया के सारे गम आपके थोड़ी हैं। चंदा ने कहा बरी से यस वेल्डन, और बरी ही में हमारा साथ निभाती है लेला और अमन हमारे साथ होंगी। तो बहरहाल जी, एक बर्थडे और है, उसके लिए मैं एक अच्छा सा गाना तलाश कर रहा हूँ शिराज के लिए, ताकि उनकी बर्थडे हम बनाएं। घर पे हैं, काम पे हैं या ड्राइव कर रहे हैं, लेकिन आप भी बड़े घाग रखते हैं, आपको पता चल गया। शिराज, माफी चाहता हूँ। हाँ शिराज मुझे सबसे पहले मैसेज करते हैं, या कम से कम दूसरा मैसेज तो उनका होता ही होता है। उन्होंने पहचान लिया और कह लेंगे ताबिश भाई लगता है आपको फ्लू हुआ है। लगता थे क्या करूं मैं, कल थोड़ा सा बाहर कुछ काम कर रहा था तो कल हवा बड़ी खराब चल रही थी शाम को, आपको याद होगा। तो पता नहीं जून का महीना आ गया, लेकिन हमारे यहाँ समझ नहीं आ रहा कि यूके में गर्मियां कब आएंगी। भाई कोई है, कोई मुझे बताएगा?
1: इवन एट ताबिश ऑन लाइक अ रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर।
0: कोई बताए ना बताए, लेकिन बहरहाल अली जफर कहते हैं कि चल दिल मेरे, पाकिस्तानी सॉन्ग।

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून लाइक अ
2: रेडियो है जवानी तो दीवानी तो इश्क होना है। वेलकम बैक। प्रोग्राम के पहले हिस्से का पूरा का पूरा हिस्सा चला गया और पता ही नहीं चला, और मैं आप लोगों की विशेज और वेल विशेज देख रहा था, और आज मुझे पता चला कि मेरी डायरी के पन्ने पे बहुत सारे नाम है भाई। मेरे लिसनर्स में बहुत सारे लोग हैं जिनकी बर्थडे है, खुशियां मना रहे हैं। गुलाम अली भाई हैं हमारे साथ ब्लैकबर्न में होते, कहते हैं ताबिश भाई आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह, जीते रहिए। आपके लिए मैं 12 बजे के बाद आपके लिए खास आपको टाइम दूंगा, क्योंकि अभी प्रोग्राम का जरा दूसरा हिस्सा चल रहा है, समझते हैं ना। और वैसे भी आप अभी निकल रहे हैं और आपने कहा आज बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है हमारी नीज की, आज रजिस्टर मैरिज के लिए आप जा रहे हैं कोर्ट, और बड़ी खुशी की बात है। आपने कहा महजबी नाम है आपकी नीज का और उन्हें आप साथ लेके जा रहे हैं, उनकी आज रजिस्टर मैरिज है। क्या बात है, हमारी जानिब से आपकी नीज को बहुत बहुत बधाई मुबारकबाद, मैनी मैनी हैप्पी। और आप वापस आ जाएं खैरियत से तो आपके लिए हम गाना भी लगाएंगे, और खास आपकी पसंद का गाना और हमारी भाभी की पसंद का गाना है। इसके बाद बारी आएगी जनाब शिराज की दोबारा, और ये सॉन्ग जा रहा है आपकी नीज महजबी के लिए। महजबी

0: जब से इश्क साहब कहते हैं इश्क करोगे तो रिस्क लेना पड़ेगा। खालिद लंगयाल भाई आज कह रहे हैं लेकिन में मैं आपको आज डेप पे सुन रहा हूँ। ताविश भाई डेप पे सुनने का क्या मजा आता है। रियली डीएवी डेप रेडियो।
1: Even at Tabish, rolling out your favorite hits across the Northwest. This is Leica Radio, Greater Manchester.

0: है जी बहार। मौसम में बहार न जाने कहाँ चला गया, और मौसम बरसात का है, और इस मौसम को कैसे मैं कहाँ लेके जाऊँ। हाथों में खत पकड़ा गया। कभी जिंदगी में आपने किसी के हाथ में खत पकड़ाया? ओह माय गॉड। आज अभी पहली भूजो जरा रेडियो के नेड़े नेड़े आ जाओ, और ये बताओ कि एक कमरे में 400 आदमी है, एक कमरे में 400 एक कमरे में 400 आदमी है, उनमें से 200 गए, उनमें से 200 गए, बाकी कितने बचे?
1: ये है लाइका रेडियो।
2: Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
4: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
5: यू मीन सफल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
6: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
7: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
8: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
9: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
10: Step into the spotlight and get modeling and casting opportunities
11: with Miss, Mrs. and Mr. Asiana 2026.
10: Brought to you by Asiana in association with ZTV and Leica Radio.
11: Get national exposure and take your first step into the world of glamour.
10: The North England Heats will be taking place at the luxurious Park Hall Resort and Spa in Preston, Lancashire.
11: On Sunday, July 5th, apply now at missasiana.co.uk.
12: Frankie Goes to Bollywood is back. Dive into a breathtakingly colourful journey of romance, epic songs, spectacular dancing with brand new songs by Bollywood hitmaker Hari Anand. This show-stopping musical celebrates ambition, transformation and the power of owning your own story. From the producers of Britain's Got Bhangra and Surinderella, Frankie Goes to Bollywood comes to the Birmingham Rep 10th to the 13th of June. For tickets and more info, click birmingham-rep.co.uk. Radio partner Leica Radio.
13: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
14: Must be won.
15: Must be won.
16: Must be won.
17: Must be won.
13: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.

0: Soccer Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: All right, jenab, currency rate ek baar phir se aapko batate hain. American dollar aaj rate ho gaya 1.34 yani 134. इंडियन रुपीज में 128 रुपए 71 पैसे, पाकिस्तानी रुपीज में 375 रुपए 60 पैसे, बांग्लादेशी टका 160 टका 10 पैसे, श्रीलंकन रुपीज 448 रुपए 11 पैसे और अफगानी रुपीज 83 रुपए 49 पैसे का।
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is LIKA Radio.
1: राइट जनाब, सोने का भाव एक बार फिर से हमारे यहाँ यूके में आज 1 ग्राम गोल्ड की कीमत 106.47 यानी 106 पाउंड 45 पेंस, पाकिस्तानी रुपीस में 24 कैरेट 1 ग्राम गोल्ड की कीमत आज 40,100 रुपीस।
0: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartyhanks.com।
2: Like

0: एक्स्ट्रा पॉडकास्ट अपडेट।
1: हाँ जी, लायक रेडियो की पॉडकास्ट अपडेट। आपको बता दें कि इस हफ्ते जो एपिसोड नंबर 18 है, ये शूट किया है हमने और इसको होस्ट कर रही हैं रूबी रजा। और जिस टॉपिक पे ये बात कर रही हैं वो है मेनोपॉज। इससे मुतालिक आपको अगर मालूमात चाहिए तो बड़े इंपॉर्टेंट मौजू पे बात हो रही है, आप इसको फॉलो कीजिए लायक एक्स्ट्रा पर।
0: लायक एक्स्ट्रा, this is Leica Radio.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
3: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas Greens start from just 711,000.
3: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Daniel. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18+. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
6: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल
7: और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
8: You mean Subtle Travel?
7: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
8: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel।
6: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
8: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
9: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161-250-1250. That's 0161-250-1250.
10: Khakra Crunch, Bhakri Munch, Chikki Sweet, Papad Beet, Pickles Heat. Ye hai Jaimin Foods ka Vibe Check.
11: Add desi tadka to your routine with Jaimin Food ke variety of snacks. Khakra, Namkeen, Papad, Pickles, Chikki, Pot Meals and much more.
10: Jaimin Foods, Desi Cravings. Available at nearest ethnic grocery stores.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
12: अपने कारोबार को अक्रॉस ग्रेटर मैनचेस्टर पहुंचाना चाहते हैं तो इसे लाइक रेडियो मैनचेस्टर पर जो साउथ एशियन कम्युनिटी के सीने में दिल बन के धड़कता है एडवर्टाइज करके सैकड़ों लिसनर्स तक रोजाना पहुंचाइए। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, ईमेल sales@leicamedia.co.uk और कॉल नंबर इज 0161-250-8222, दैट इज 0161-250-8222। लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, आपकी कम्युनिटी, आपका स्टेशन।
0: 90s throwback plays now.
2: Leica Radio.
1: राइट जनाब, वेलकम बैक। और अब एसपी बाला सुब्रमण्यम, आज हमारी डायरी के पन्ने पे उनकी पैदाइश का दिन लिखा है 4 जून, और ये गाना हमें रिक्वेस्ट किया आसिम तुमने, तो तुम्हारे नाम आज की पहली फरमाइश।

हमारा सी नंबर का जो फीडर है जिसे मैं ऊपर नीचे करके और बैकग्राउंड में म्यूजिक चलाता हूँ आपके लिए, ये आज मुझे बहुत परेशान कर रहा है। इसकी कंप्लेंट मैंने लंदन में कर दी है, आप फिक्र ना करें। इसकी वजह से मैं जरा थोड़ा सा डिसअपॉइंट होता हूँ, और जब मैं बोल रहा होता हूँ तो मैं कंफ्यूज भी होता हूँ कि यार मैं क्या कह रहा था। कहते हैं साहब कि दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का होता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा मोहब्बत का पौधा होता है, जो जमीन में नहीं बल्कि दिलों में उगता है। जबरदस्त बात कही आसिफ तुमने, थैंक यू। और ये जो सॉन्ग सुन रहे थे अभी, छेल छबीला सा, फिल्म का नाम था दीवार। ये बहुत बरसों के बाद, हमें कभी फरमाइश नहीं करते हैं, राहिम आपने फरमाइश किया था इस गीत को, तो आपके नाम हुआ, एक अच्छी फरमाइश थी। फरजाना नसीम ने वारंटी से हमारी पहली का जवाब दिया कि ताबिश भाई कहीं कोई नहीं गया, 400 के 400 हैं कमरे में। अच्छा जी, और अदनान हमारे साथ है रॉजल में। अदनान तुमने कोई वॉइस मैसेज भेजा है लेकिन वक्त नहीं है मुझे सुनने का, बहरहाल कोशिश करेंगे। रॉजल में हमारे साथ है गजाला जबी हमारी बहन, और रुखसाना अफजल, और हमजा ने हमें काफी देर पहले मैसेज किया था, कहा था नाइस सॉन्ग ताबिश भाई, तो थैंक यू वेरी मच। और स्टॉकपॉट में जमशेद चौधरी भाई ने भी यही कहा कि ताबिश भाई कोई कहीं नहीं गया, 400 के 400 वही के वही, और 400 सो रहे। खालिद महमूद भाई ने भी कहा कि हाँ जी बिल्कुल 400 है, और तबस्सुम हमें सुन रही है, तबस्सुम आपका बहुत शुक्रिया। और जरीन वापस आ गई, और जरीन भी हमें सुन रही है आष्टन में, और आष्टन भी हमारे साथ हैं काशिफ भाई, एसपी बाला सुब्रमण्यम, क्या आवाज थी साहब, क्या आवाज थी। बहुत छोटी सी जिंदगी पाई उन्होंने, यकीन कीजिए, लेकिन अपनी उस जिंदगी में उन्होंने जो कुछ पाया, क्या बात, इज्जत दौलत शोहरत, मगर जिंदगी थोड़ी थी। मेरे रंग में रंगने वालों, मैं वापस आ रहा हूं 12 बजे के बाद, कोई कहीं नहीं जाएगा।

0: क्यों है?
1: आखिर इतनी मोहब्बत क्यों करते हैं लोग?
0: मेरे सवालों का
1: बोलो, मेरे सवालों का जवाब दो,
0: दो
1: ना। किसी ने मुझे लिख के भेजा, नहीं देते जवाब, बोलो क्या कर लोगे?
0: मेरे रंग में रंगने वाली,
1: ओ लैला,
0: हो या
1: सपनों की रानी,
0: या
1: हो मेरी प्रेम कहानी। चलिए जी, उस प्रेम कहानी की पाठशाला को लेके चलते हैं 12 बजे की खबरों की जाने।
2: इब्न तबीश ऑन द मिड मॉर्निंग शो,
3: लाइक अ रेडियो।
1: किस किस को स्कूल के जमाने का वो जमाना याद है, बस कोई पहेली नहीं पूछ रहा। लाइन से बच्चे एक यूनिफॉर्म में स्कूल जा रहे होते हैं, अपनी अपनी क्लास, अपनी शिक्षा में जाने के लिए, अपनी अपनी पाठशाला में जाने के लिए। याद है ना, एक दूसरे की उंगली पकड़कर।

0: खिजां तो देख चुके, बस अब बाहर आ जाए। कोई तो बात हो ऐसी कि करार आ जाए। कोई तो बात हो ऐसी कि करार आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारा ये इंतखाब इस गज़ल का आपको अच्छा लगा होगा, और ये गज़ल बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी लगी, जिसमें सरे फहरिस्त रही अतीका जी और बरी में लैला और बरी ही में अपनी रहीला जी। रहीला जी ने बड़ी प्यारी बात हमें लिख के भेजी इस गज़ल से रिलेटेड। कहती हैं, तू समझता है कि हम रिश्तों की दुआई देंगे, तू समझता है कि हम रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे पे दिखाई देंगे, और हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हमको तो महसूस किया जाए खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं जो सुनाई देंगे।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: जी, करेंसी क्रिएट अमेरिकन डॉलर में 1.34 इंडियन रुपीज में 128.71, बांग्लादेशी टका 166.10, पाकिस्तानी रुपीज 375.59, श्रीलंकन रुपीज 448.11 और अफगानी रुपीज 83.49।
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKER. Download LemFi now. T's and C's apply. You're listening to LIKER Radio Greater Manchester on 963 AM and 1377 AM. Previously known as Asian Sound Radio. LIKER Radio.
0: साउथ हॉल वालों का पैगाम कहते हैं कि यूरोप में किसी जगह भी बड़े अच्छे अच्छे बीचेस हैं, और खासतौर पे इन पे जाने के लिए कहते हैं कि इंक्लूड्स हो सकते हैं फ्लाइट्स और होटल्स भी। और अभी अपनी जो है ये हॉलीडे बुक कराइए, नंबर है 0208-574-8410।
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
0: इस हफ्ते के हमारे आर्टिस्ट ऑफ द वीक है अरिजीत सिंह, और ये गाना हम नाम करेंगे जरीन के।

0: इसीलिए तो कहते हैं कि दिल तो बच्चा है साहब, दिल का क्या है, ये कभी भी धोखाधड़ी कर सकता है जरीन, समझ लो तुम समझ जाओ। Listen to me, इब्तिदावे।
1: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
0: गोल्ड का रेट आज हमारे यहाँ 106.45 यूके में, जबकि पाकिस्तानी रुपीस में 4,100 रुपए 24 कैरेट।
1: गोल्ड रेट इज ब्रॉट टू यू बाय हार्टी हैंक्स, यूके प्रीमियर डिजिटल मीडिया एजेंसी, हेल्पिंग कंपनीज एक्सपैंड देयर डिजिटल फुटप्रिंट। विजिट hartyhanks.com। Leica Radio, Leica Radio,
0: ये है Leica Radio। ठीक 12:30 बजे एक लाइव रीड होती है जो हम आपको याद दिलाते हैं, कभी हरिहरन कभी आतिफ असलम, क्योंकि इन दोनों के जो लाइव कॉन्सर्ट हैं उसके हम हैं मीडिया पार्टनर। तो आपको बता दें कि आतिफ असलम आ रहे हैं इसी महीने 14 जून को O2 लंदन में। टिकट के लिए AXS पे जा सकते हैं आप, या वेनी पे भी आपको टिकट मिल सकता है। और उसके बाद अगले महीने 4 जुलाई को आएंगे हरिहरन, जी हाँ, सैटरडे 4 जुलाई हरिहरन, और हरिहरन आ रहे हैं रॉयल फेस्टिवल हॉल लंदन में। और टिकट के लिए southhallcenter.co.uk के भी जाइए।
2: ये है Leica Radio,
3: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
4: यू मीन सॉफ्ट हॉल ट्रेवल?
3: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर,
4: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्ट हॉल ट्रेवल।
3: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल सॉफ्ट हॉल ट्रेवल 24 hours a day 7 days a week ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
6: Location, location, location.
7: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
6: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
7: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
6: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
7: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
6: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
7: To book, call our London office on 0203963-5757. Greens by Danube. Prime location,
6: high appreciation
7: in Dubai.
8: The voice that turned love, heartbreak and memories into timeless songs. Pepe's presents
9: Atif Aslam live in the UK.
8: Atif Aslam brings his unforgettable sound to the O2 London on Sunday the 14th of June.
9: Book your tickets now at AXS.
8: Presented by Denby Productions, supported by Rianne's Music.
9: Exclusive radio partner, Leica Radio.
10: Need a car the halal way? Look no further. Halal Car Finance is now available in the UK with Ayan. No interest, no hidden fees, no compromise. Apply today at ayan.co.uk. Ayan, drive with Baraka. Subject to status checks. Representative APR 10.9%. This rate reflects Ayan's rental charges. We do not charge interest.
11: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
12: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन 4 मजेदार फ्लेवर्स।
11: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।
1: Leica Radio Network, प्राउड हॉस्पिटैलिटी पार्टनर रगासान। Advertise your service here. 0161 250 822. Leica Radio, Greater Manchester.
13: Hi, मैं उर्मिला खान। सुनिए मुझे Leica Radio, Greater Manchester में दोपहर 1 से 4 बजे तक The Magazine Show में।
0: Right, जनाब, अब बारी है हमारे हरदल अजीज। रोजाना मुझे गाड़ी में चलाते चलाते गाड़ी बहुत तंग करते हैं शिराज भाई। शिराज भाई का ताल्लुक भी कराची से, आज उनकी बर्थडे है भाई, 4 जून, हैप्पी बर्थडे जनाब। और अपने शिराज भाई भूल गए,

हैप्पी बर्थडे टू यू फ्रॉम लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर, मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से। शहराज भाई आप जीते रहे हजारों साल, और हर दिन के हो कितने साल, क्या कहते हैं, कुछ ऐसे ही कहते हैं मेरा ख्याल। अच्छा जी, आपको लेके चलते हैं, आपकी सालगिरह मनाते हैं कहीं किसी दूर जंगल में, मंगल मनाते हैं जाके। कहते हैं ना कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। आपके मिजाज और मूड के मुताबिक फिराज भाई, ये गाना मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए चल के कहीं साहिल समंदर पे दस्तरखान बिछाते हैं और आपका केक काटते हैं।

हाँ जी, जिस जिसका भी आज सालगिरह का दिन आया है, हमारे का मौसम जंगल में मंगल बनाने का तो नहीं है, लेकिन बहरहाल घर में ही केक काट लें तो ज्यादा बेहतर होगा। एक बार फिर से तमाम लोगों को, उन लोगों को जिनकी आज बर्थडे थी, बशमूल एसपी बाला सुब्रमण्यम, शिराज भाई आपको, और

जी एक और थे कोई मेरे लिस्टनर जिन्होंने कहा था आज मेरी बर्थडे में नाम भूल गया कौन थी भाई। मलिका ने हमें मैसेज किया, अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, हमारी अभी सुबह हुई है, लो कर लो बात। आपने भी नाम लिखवा लिया है आधे दिन गुजार कर सुबह करने वालों में। रोबिन भाई ने हमें ज्वाइन किया है। रोबिन भाई कहाँ हैं आप, आज घर पे हैं या घर से काम कर रहे हैं या आज आप जाएंगे काम पर या जा रहे हैं सफर में। और मलिका ने हमसे पूछा, ताबिश भाई किधर थे कल आप। लो जी कर लो गल, मैं तो यहीं था कल, इसका मकसद कल कहीं गलती से आपने किसी और रेडियो को तो नहीं ट्यून इन कर लिया था। ये वक्त रोजाना मेरा आपके यहाँ या इस स्टूडियो में होता है और मैंने कहाँ जाना है भाई। अच्छा जी, आज की हमारी पहली ये थी कि जी एक कमरे में 400 लोग हैं। गौर से सुनिएगा दोबारा शिराज, आपने मुझे कंफ्यूज किया था। और एक कमरे में 400 लोग हैं, 200 गए, बाकी बताइए कितने बचे। और ये सॉन्ग हम नाम कर रहे हैं, बहुत गौर से हमारे प्रोग्राम सुनेंगे अब, क्योंकि अब ये आखिरी मरहला है प्रोग्राम का। तबस्सुम में आपके नाम करेंगे आपकी पसंद के इस गीत को। न जाने आप किसको आवाज देने का कह रही हैं। लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज, फिल्म का नाम दुश्मन। मेरा कोई दुश्मन नहीं वैसे।

0: मैं अक्सर कहता हूँ अपने प्रोग्राम में लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई मैं फरमाइशी प्रोग्राम नहीं करता, मैं रिक्वेस्ट नहीं लेता, लेकिन हाँ मेरे प्रोग्राम मेरे मिजाज के फॉर्मेट में अगर आपकी पसंद आ जाए तो फिर वो पसंद कहीं नहीं जाती।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, जनाब, SBI वालों का पैगाम कहते हैं कि इंडिया अपने प्यारों को, अपने अजीजों को रकम पहुंचाने के लिए इनकी मोबाइल ऐप के जरिए आप रकम पहुंचाएं, इससे आपको रेट अच्छे मिलते हैं। आज का रेट है 127 रुपए 15 पैसे।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Ye hai Laika Radio.
2: Laika Radio. You know the clean, fresh feeling after brushing? Siddhayu toothpaste takes it to another level. Clove, neem, herbal actives, proper Ayurvedic care, but modern and premium. Fresh breath, healthy gums, no harsh chemicals. From the house of Baidyanath. With over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Siddhayu, Ayurved that fits your life.
3: This Eid al-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
4: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल।
5: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
4: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर।
5: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल।
4: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
5: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
6: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250। दैट्स 0161 250 1250।
7: अजी ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा।
8: महाराजा टूर्स ला रहे हैं कैप्टिवेटिंग चाइना 2026, शंघाई, बीजिंग, शान और चेंगडू का अनफॉरगेटेबल सफर, ग्रेट वॉल, टेराकोटा वॉरियर्स, हाई स्पीड ट्रेन्स और एडोरेबल पैंडास, फ्लाइट्स, होटल्स, इंडियन खाना और गाइडेड टूर्स सब इंक्लूडेड फ्रॉम £3,299 पर पर्सन। विजिट maharajatours.co.uk या कॉल 07956154846.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Zara Holy

0: देने दीवार
1: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th ऑफ जून.
3: Want magic in every bite? Grab Hero Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hero Foods, king in quality, king in taste.
4: A Leica Radio Classic.
5: Yes, classic song हो और फिर पसंद मेरी और गुलाम अली भाई की एक जैसी हो तो फिर क्या बात है. गुलाम अली भाई ने आज हमें बताया था कि ताबिश भाई आज हमारी शादी की सालगिरह है यार. कितना यादगार दिन होगा आपके लिए. आज ही के दिन 4 जून 1989 को आपकी शादी हुई थी. मेरी तरफ से मुबारक और ये गाना भी आपको.

0: नहीं नहीं नहीं माफी नहीं मिलेगी ना ना। तमाम साथियों दोस्तों का बेहद शुक्रिया। शाहिद भाई बहुत देर से आया आप हमारे पास। शाहिद भाई आप हमेशा लेट क्यों आते हैं, क्या बात है? शमीम बानो बेगानी आप कैसी हैं? और तमाम दोस्तों और अहबाबों का बेहद शुक्रिया इस छोटी सी बात के साथ कि खोना और पाना मोहब्बत नहीं होती। कहते हैं कि खोना और पाना मोहब्बत नहीं होती, बस मोहब्बत होती है। अदब होता है, एहतराम होता है, किसी की पुकार पर लब्बैक कहना होता है।
1: इबन तबीश ऑन द मिड मॉर्निंग शो
2: लाइक अ रेडियो।
0: प्रोग्राम की आखिरी पसंद अदनान की रोशजेल में और एक कमरे में 400 लोग सो रहे थे, ये एक कमरे में 400 लोग थे, दो सो गए, बाकी कितने बचे? दोनों का जवाब दुरुस्त थे। 398 जिन्होंने लिखा और जिन्होंने लिखा 400। फी अमान अल्लाह।

0: Magazine Show with Robina Khan. Leica Radio.
1: Leica Radio, Greater Manchester. And Geet, you were listening to Makhmali. बाज़ लफ्ज़ ऐसे होते हैं यानी कि वेलवेटी, राइट? मखमली कितना मुश्किल लगता है, वेलवेटी ये भी मुश्किल लगता है, नहीं वेलवेट को सब जानते हैं. सो मखमल उसके बहुत ही प्यारा तर्जुमा है. और जब किसी बात को आप मखमली कहते हैं तो वो बहुत उसका जो एडजेक्टिव मैटर है वो बढ़ जाता है, तारीफ का जो स्टैंडर्ड है वो उसमें इंक्रीज हो जाता है. सो ब्यूटीफुल ट्रैक आपने अभी सुना श्रेया घोषाल अरिजीत सिंह की आवाजों में. क्या कॉम्बिनेशन है. और इसके साथ ये भी बता दें सम्राट पृथ्वीराज ये फिल्म का नाम था, 2022 की फिल्म. और इससे पहले बुद्धू समन है. बुद्धू समन होता है तो अच्छा होता है बच्ची, बोंगे बने रहो बोंगे बने रहो बुद्धू बने रहो, अंदर से बड़े होशियार हो. कपूर एंड सन्स फिल्म से आपको 2016 की फिल्म से अरमान मलिक की आवाज में हमने आपको गीत सुनवाए, दो बैक टू बैक सॉन्ग. थर्सडे, मंडे टू थर्सडे आप सुनते हैं द मैगजीन शो विद रुबीना खान और लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर. तो वीक का आखिरी शो, राइट? वैसे मैं सैटरडे आजकल मिल रही हूँ आपसे 7 बजे से 10 बजे तक कवर कर रही हूँ, लेकिन मेनली रूटीन यही है कि 7 till मंडे टू थर्सडे 1 till 4 PM. तो बहुत सी बातें होंगी, बहुत सी गपशप होगी, बहुत सी हमारे जो फीचर्स हैं उनके साथ. ये है आपका अपना नंबर वन द लाइका द मैगजीन एंड एवरीथिंग.
0: The Leica Radio Network across London, Manchester, and the Midlands.
1: Yeah. Aks 2001 ki film. KK. बंदा बिंदास होना चाहिए, बक्की बात है.

0: तारिक हलाल। नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंग्लैंड में तारिक हलाल फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी पाने के लिए आज ही राब्ता कीजिए tarikhalal.com।
1: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: अच्छा आप तलक बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे हीर पैराडॉक्स गिनी वेज सनी 2026 की फिल्म पहले गिनी वेज कुछ और था और अब गिनी वेज सनी है
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Currency exchange rate सुन लीजिएगा और आज का जो currency exchange है US dollar में आपको मिलेगा 1.34 माफ कीजिएगा इंडियन रुपीज मिलेंगे 128.71 पाकिस्तानी 375.59 बांग्लादेशी 166.10 श्रीलंकन 448.11 अफगानी 83.49
1: Leica Radio Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Leica Radio Network. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. With the UK's biggest Asian hits. A Leica Radio classic. Plays now.
0: लता मंगेशकर किशोर कुमार फिल्म का नाम सागर 1985 की फिल्म

0: Sabrina Khan with The Magazine Show. Like a Radio.
1: जी बिल्कुल, लाइक रेडियो. और बाज़ूकात यूँ होता है कि कुछ लोग आपसे बहस करना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि देखें यूके का वेदर कितना ख़राब है. यानी जून का महीना है, मुझे ये कहा जाता है तो कि कितना, मतलब जून के महीने में हम एक्सपेक्ट करते हैं ना सड़ी हुई गर्मी, सड़ी सख्त गर्मी जिसमें पसीने बह रहे हों और बहुत ही ज़्यादा प्यास लग रही हो. और यानी कि वो मंज़र सारा जो इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में होता है. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को अडेप्ट कर लेना चाहिए जो भी मौसम होता है. अभी ये जो गीत में हमने माहौल सुना है ना, सागर किनारे दिल ये पुकारे, आह जैसे ठंडी हवा चलती है और जैसे साहिल समंदर होता है, बिल्कुल सही ये पोर्ट्रे करता है किसी के दिल की आवाज़ के. वाकई उस वक्त किसी बहुत अपने को साथ होना चाहिए. लेकिन जब माहौल या मौसम की बात होती है तो मौसम के साथ तो एडजस्ट ही करना होता है. मुझे कभी ऐसा नहीं लगा है कि उफ बारिश हो रही है तो क्या मसला बन गया है. यानी समटाइम इंसान ऐसा हो जाता है, लेकिन मेरी डिस्कशन आगे बढ़ती नहीं है जब लोग यूके के वेदर के बारे में बात करते हैं. क्योंकि जब आसमान से बादल बहुत नीचे आ जाते हैं, यानी जैसा आज का मौसम है, अभी दिस आवर एंड नेक्स्ट आवर में बादल ही रहेंगे, उसके बाद जो है थोड़ा सनशाइन हमें देखने को मिलेगी, तो उसमें मुझे ऐसी फीलिंग आती है. आप भी कभी सोच के देखिएगा, जैसे आप किसी अमेज़ॉन के जंगलों में हैं और जहाँ पर बिल्कुल हमेशा गहरे बादल छाए रहते हैं, जहाँ पे सूरज का कम कम जो है गुजर होता है, तो जस्ट फील लाइक दैट कि ये एक बिल्कुल अजीब यूनिवर्स में हम रह रहे हैं. जब इस तरह की फीलिंग जब आपको कोई यूनिवर्स की तरफ से आ जाती है तो कहाँ आप कंप्लेन करते हैं. मेरा तो ऐसा ख्याल है.
2: Star Trek of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: आशा भोसले और यशोदास की आवाजें आप सुन रहे थे छोटी सी बात, यानी के फिल्म का नाम।
1: Danny, hit of the hour is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
0: चलिए बारी है अभी एक पंजाबी गीत आपको सुनवाने की। आवाज है नूरा लाल की।

0: Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK Online and via the SBI UK branch.
1: मनी ट्रांसफर करना चाहते हैं, सेंड करना चाहते हैं इंडिया, तो आपको कंपेटिटिव रेट मिलेंगे. आज 1 पाउंड का एक्सचेंज

0: This is Rabina Khan with The Magazine Show. Laika Radio.
1: दो गीत आपने सुने. पहला गीत था भूत बंगला, बड़ा बड़ा भूत छोटा भूत. भूतों से कौन डरता है? भूतों से डरने वाले डरते भी हैं. 2026 की फिल्म से, जो कि बड़ी कॉमेडी फिल्म थी, बहुत पसंद की गई. इत्तेफाक है ये कि मैंने मिस कर दी. जितनी मैंने कोशिश की थी कि इसको ज़रूर देखना है, नहीं देख पाई. और अब अभी भी उम्मीद है कि किसी वक्त घर में बैठ के किसी ना किसी तरह इसको देखा जाएगा. लेकिन जो सिनेमा का मज़ा होता है वो तो फिर अपना ही होता है. और ख़ास तौर पर ये जो भूत वाली फिल्में होती हैं, उसमें एक माहौल भी होता है. देखेंगे कैसे बंदा डरता है. पता सारा होता है लेकिन फिर भी बंदा डरता है. एक तो यह है ना कि अचानक ही कहीं से भूत आ जाए. एक यह है कि आपको पता है कि फिल्म चल रही है, फिर भी आप डर रहे हैं और फिर भी आप हंस रहे हैं. जब ज्यादा डर लगता है तो बंदा फिर हंसता ही है. मुझे वैसे इस वक्त बिल्कुल डर नहीं लग रहा. बात से डर लगा है, बात से हंसी आई है. और फिर दूसरी गीत था नदानिया फिल्म से 2025 की, तरिकती धूम, तरिकती धूम. और अभी एक और बहुत खूबसूरत गीत की तरफ मैं आपको लेकर जा रही हूँ. कहीं प्यार ना हो जाए ये फिल्म का नाम भी है और टाइटल ट्रैक भी है.
0: टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th ऑफ जून.
2: Pace Piri Piri is turning up the heat in Bolton with grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton, Pepe's Piri Piri, definitely worth a visit.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आवर रेडियो सेल्स ऑन 0161-250-8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
4: Laika Radio Network, now the home of Laika Radio Greater Manchester.

0: 90s के सॉन्ग जब प्ले किए जाते हैं या क्लासिकल क्लासिक सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं वो इतने ही लंबे होते हैं. प्यार एक्चुअली बाप का अंत फिल्म का नाम है. लता मंगेशकर और मोहम्मद अजीज की आवाजें और यही गीत हमें खबर पर नजर की तरफ ले जा रहा है.
1: खबर पर नजर विद रुबीना खान.
0: लाइक अ रेडियो. सर जी, अब एक ऐसी खबर है जो वाकई मैं उसमें से एक जो उसका मेन कैरेक्टर है कोशिश करूंगी कि उसका नाम ना लूं, एंड पे लूं. आप अपने जहन में सोच सकते हैं कि मैं क्या बात कर रही हूं. और ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है. और ये खबर है स्कॉटलैंड के एक रिहायशी इलाके में इन दिनों यानी आजकल एक मफरूर, अब यहां मैं डैश इस्तेमाल कर रही हूं, एक मफरूर शहरियों के लिए दर्दे सर बना हुआ है. और उस पर इल्जाम ये है कि वो खड़ी गाड़ियों के रबड़ के हिस्सों को अपनी चोंच से कुतर देता है, जिसकी वजह से अब तक शहरियों का हजारों डॉलर यानी लाखों का नुकसान हो चुका है. और जो यहाँ के रहायशी हैं ये कह रहे हैं कि ये जो चीज़ है जो अपनी चोंच से रबड़ के को खुरच रही है या काट रही है ये बहुत ही नुकसान कर रही है. और लोग बहुत नुकसान की वजह से परेशान भी है. एक औरत ने मीडिया को कहा कि यहाँ हमारे इलाके में अब इसका नाम भी अच्छे लफ्जों में नहीं लिया जाता, इसने गाड़ियों का कबाड़ा करके यहाँ तबाही मचा रखी है. दिलचस्प बात यह है कि ये यानी डैश कभी कभार चंद हफ्तों के लिए गायब हो जाता है तो लोग सुख का सांस लेते हैं कि शायद बला टल गई, लेकिन अगले ही दिन मोहल्ले से आवाज आती है कि वो लौट आया. सो अब जरा सुन लीजिएगा, यहाँ आपको क्लू मिलेगा कि वाइल्ड लाइफ माहरीन का कहना है कि वो यकीन से नहीं कह सकते कि ये डैश गाड़ियों के रबड़ पर ही क्यों हमले कर रहा है. ताहम इसकी तीन मुमकिन वजूहात हो सकती हैं. या तो गाड़ी के शीशे में अपना अक्स देखकर इसे अपना हरीफ समझता है इसलिए नुकसान पहुंचा रहा है, या अपने इलाके का दिफा कर रहा है, या इसे रबड़ में मौजूद मखसूस मादनियात या चर्बी की तलब होती है, या फिर वो सिर्फ बोरियत दूर करने के लिए ये खेल रहा है. अब आप उस डैश को फिल करें. अंदाजा तो आपको हो गया, चोंच मैंने कहा है तो कोई परिंदा ही होगा ना जो ये काम कर रहा है. तो चलिए इस सस्पेंस को मैं खत्म कर रही हूँ. ये एक तोता है, पैरट है, जो कि स्कॉटलैंड में ये मसला लेकर गाड़ियों के साथ पेश कर रहा है यानी उनकी रबर्स खराब कर रहा है. कहती है वो लौट आया, बिल्कुल ऐसे जैसे. और मफरूर भी है, जब चाहते हैं उसको ढूंढे तो मिलता नहीं है, फिर कभी आके मौजूद हो जाता है, बरामद हो जाता है. चलिए इसी के साथ मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत गीत की तरफ, मलिका इतरन नूरजहां के गीत की तरफ लेके जा रही हूँ. बड़ी मुश्किल से हुआ, तोता नहीं पकड़ा जा रहा.
1: Is brought to you by the Leica Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.

0: Jamaica Radio, Greater Manchester. Formerly known as Asian Sound Radio. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
1: Gold rate ka aapko bata dein, aaj 106.45 pounds per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
2: ये है लाइका रेडियो
0: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Leica Extra Podcast Update.
1: तो जी आपको लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट की अपडेट दे दें हैं और इस पॉडकास्ट का टाइटल है लाइव इन रिलेशनशिप्स होस्टेड बाय रेडियो वाली एंड इसमें डिस्कस किया जा रहा है और लाइव इन रिलेशनशिप्स आर स्टिल अ टैबू इन अवर कल्चर या अब वक्त माहौल बदल गया है और लोग इसको इतना बुरा नहीं समझते हैं इस सिलसिले में ये एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना कि सॉलिड टॉपिक है जिस पर बात अगर कोई कर रहा है तो ये बहुत ही बड़ी बात है तो डू विजिट लाइक एक्स्ट्रा पॉडकास्ट और जो कि अवेलेबल है ऑन स्पॉटिफाई यूट्यूब एमेजॉन एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स
0: द मैगजीन शो विद रुबीना खान
3: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.
4: Surrenderella is back for 2026. Beck Theatre Hayes, 22nd and 23rd of July. Arts Depot Barnet, 17th and 18th of October. Theatre Royal Stratford East, 20th to the 31st of October. With smash hit music by the hitmaker PBN, Surrenderella is guaranteed dizzy panto fun for all the family. And with tickets starting from £15, click rifcotheatre.com and be sure to book before the clock strikes midnight. Surrenderella goes back into the Bollywoods. Radio partner Leica Radio.
5: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
6: You mean Subtle Travel?
5: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
6: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel.
5: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए
6: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
7: Call Subtle Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
8: This Saturday, the £12 million lotto jackpot must be won.
9: Must be won.
10: Must be won.
11: Must be won.
12: Must be won.
8: Yes, the lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
13: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
14: 1. Magic in every bite? Grab Hera Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hera Foods, king in quality, king in taste.
0: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
15: Hi, this is Akshay Kumar.
16: Hi, this is Akshay Kumar.
15: And you're listening to Leica Radio.
17: Leica Radio.
18: Hi, मैं हूँ अश्विनी हर शाम 7 से 10 बजे तक सुनिए मुझे लाइका गोल्ड रेडियो लंदन एंड ग्रेटर मैनचेस्टर इन द इवनिंग शो विद अश्विनी फीचर्स बड़ा ही इंटरेस्टिंग अमेजिंग आप सभी के लिए

0: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
1: हॉलीडे पे जाना चाहते हैं तो साउथ हिल ट्रेवल से रब्ता कर सकते हैं आप और अपनी हॉलीडे बुक कर सकते हैं. मेक श्योर कि आपकी ये जो हॉलीडे हैं समर वेकेशन समर हॉलीडे ज़बरदस्त गुजरें और एक्सप्लोर करें आप डिफरेंट बीच और एस्केप करें इस सिटी माहौल से. और हॉलीडे के लिए आप साउथ हॉल से जब आप रब्ता करते हैं तो आपको डील्स मिलेगी इंक्लूडिंग फ्लाइट्स होटल्स और ट्रस्टेड नेम फॉर 40 years है एंड विनर ऑफ द ब्रिटिश ट्रेवल अवार्ड. विजिट साउथ हॉल ट्रेवल और call on 0208-574-8410.
0: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. 90s throwback plays now. Like

अभी जो आवाज आप सुन रहे हैं कविता कृष्णमूर्ति और सलामत मोहम्मद सलामत की है। दिल ये कहता है कि शायद वो फसरदा तो भी, दिल की क्या बात करें, दिल तो है नादां जाना।

0: This is Rabina Khan with The Magazine Show. Like a Radio.
1: जी लाइक रेडियो और प्रोग्राम द मैगजीन शो का थर्ड एंड फाइनल आवर शुरू हो चुका है. दो गीत आपने सुने हैं, यानी टू सॉन्ग्स आपने सुने हैं. और पहले सॉन्ग का बता दें आपको कि आवाज थी एक कमाल खान एंड पलक मुंजाल की, किसी का भाई किसी की जान फिल्म से इस गीत को हमने आपके लिए प्ले किया. सेकेंड सॉन्ग था आव्या आवन जावन दे, दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट. अरिजीत सिंह और निकिता गांधी की आवाजें थी वॉर टू 2025 की फिल्म से इस गीत को चुना. सो प्रोग्राम का थर्ड एंड फाइनल आवर है और इसमें आपके लिए बहुत ही अच्छी प्लेलिस्ट के साथ साथ जो रखा है वो है कोट ऑफ द डे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड होती हूँ कि एक तो खबर पर नजर एंड देन दिस एंड शॉर्ट स्टोरी, ये तीनों जो सेगमेंट्स हैं या जो फीचर्स हैं वो हमारे प्रोग्राम में और दूसरी चीजों के साथ साथ चलते रहते हैं. सो 3:30 पर हमारे साथ जरूर रहिएगा फॉर कोट ऑफ द डे के लिए.
0: क्वोट ऑफ द डे विद रबीना खान.

0: देने दीवार।
1: है जवानी तो इश्क होना है, इन थिएटर्स नियर यू
2: ऑन द 5th of June।
3: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिज, है ना?
4: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स।
3: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ।

0: कबीर सिंह फिल्म से बहुत ही खूबसूरत गीत अभी आप सुन रहे थे। द मैगजीन शो आप सुन रहे हैं।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: करेंसी एक्सचेंज रेट आपको बता दें, आज 1 pound के एक्सचेंज में आपको US डॉलर मिलेंगे 1.34, इंडियन रुपीज 128.71, पाकिस्तानी 375.59, बांग्लादेशी 166.10, श्रीलंकन 448.11, अफगानी 83.49.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. LIKA Radio. Formerly known as Asian Sound Radio. A LIKA Radio classic. Plays now.

0: लता मंगेशकर की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज ऑब्वियसली आपने सुनी, और फिल्म का नाम था मासूम जिंदगी। मैं हैरान हूँ, परेशान हूँ, सब हैरानियाँ और परेशानियाँ दूर हो जाती हैं जब थोड़ी बहुत इंसान समझ बूझ से काम लेता है। तो चलिए ऐसे ही एक सेगमेंट की तरह चलते हैं जहाँ पर हमें कोई ना कोई लेसन मिलता है, और ये लेसन मिलता है आज के दिन कोट ऑफ द डे के हवाले से।
1: Quote of the day with Rabina Khan. Like a radio.
0: आज की जो कोट है हमारे पास वो एक एंशियंट फिलोसोफर की है, एपिक्यूरस उसका नाम था, और उसने कहा ये कि तकलीफ एवर, दुख या तकलीफ यानी फिजिकल दुख या जो तक दर्द है वो एवर लास्टिंग और नाकाबले बर्दाश्त नहीं होता। अगर बात इसको जहन पर आप बढ़ा कर महसूस ना करें तो आपकी तकलीफ जो है वो उसी कदर कम भी हो सकती है, और अगर आप बहुत ज़्यादा महसूस करें तो बहुत ज़्यादा भी हो सकती है। इस एंशियंट फिलोसोफर ने कहा कि एहसास को उसने चैलेंज किया कि हमारा दुख उस वक्त नहीं बनता जब वो हमें मिल रहा होता है, बल्कि उस नज़र से ज़्यादा और कम हो जाता है जिस तरह हम उसको महसूस करते हैं। इस चीज़ को एक्सपीरियंस करके ज़रूर देखिए कि क्या वाकई ऐसा होता है कि तकलीफ़ को हम ज़्यादा महसूस करते हैं और बहुत ज़्यादा उसके लिए अपने आप को शायद सिंपथी भी गेन होती है। इस तरह से साइकोलॉजी है इसमें, मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा सब करते हैं या वो अपने आपके लिए सिंपथी गेन करते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि जिससे आप सोचेंगे। मुझे याद है कि हमारे घर में यह बात होती थी कि जब बहुत गर्मी है तो गर्मी गर्मी ना कहो, इतना कहोगे तो फिर गर्मी ही लगेगी। मुझे याद है कि हमारी अम्मी कहा करती थी कि जितना ज़्यादा किसी चीज़ को महसूस करोगे, जब सर्दी लाहौर में कभी कभी कम कम पड़ती है, लेकिन जब सर्दी है और हीटर के आगे बैठे रहना है तो ये कहा जाता था कि इतना जितना अपने आप को कहोगे उतनी ही तुम्हें इस तरह से ठंड लगेगी। तो हर चीज़ आपके जहन की पैदावार होती है। एपिक्यूरस ने ये कहा, और उसने कहा कि जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि आप अपनी डिज़ायर्स को कैसे मैनेज करते हैं, इस चीज़ पर उसने ज़ोर दिया, उनको कैसे हासिल करें, फ्रेंडशिप पर ज़ोर दिया कि ये बहुत ज़िंदगी की खूबसूरत चीज़ है, और गैर ज़रूरी खौफ से इंसान को निजात पानी चाहिए।
1: Listen live and listen back to your favorite shows.
0: पलकें तरन्नुम ने उठा की आवाज, गैर जरूरी खौफ से अपने आप को आजाद करें, जिंदगी जिए।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: आर्टिस्ट ऑफ द वीक आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह, लेकिन उनके साथ दूसरी आवाजें भी थी। आर्टिस्ट ऑफ द वीक अरिजीत सिंह हैं। यहाँ पर तमाम सुनने वालों का बहुत शुक्रिया, लेकिन तारिक आपने कहा और बिल्कुल सही कहा कि अख लड़ी बदोबदी जो गाना है वो बनारसी ठग फिल्म से है, हशर नशर फिल्म से नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा और मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ। सो यस, बहुत ही मशहूर गाना था, बहुत ही फिल्म भी मशहूर हुई और मेरे ख्याल बहुत ज्यादा सिनेमाज में चली, तो यहाँ पर करेक्ट कर रही हूँ मैं अपने आप को।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: मनी सेंड करना चाहते हैं इंडिया और कम्पेटिटिव रेट्स लेना चाहते हैं तो सेंड कीजिए मनी वाया SBI योनो ऐप या ब्रांच के जरिए। आज आपको ब्रिटिश वन ब्रिटिश स्टर्लिंग पाउंड देगा 128.71 इंडियन रुपीस, और अगर आप जून से के आखिर तक मनी भेजते हैं 1,000 pounds, सो यू विल बी इन टू विन अ 75 pound वाउचर डेली और एंड अ 1 gram गोल्ड कॉइन एवरी वीक व्हेन सेंडिंग ओवर 2,000 pounds। एंड सी इज अप्लाई
1: बैंक ऑफ इंडिया यूके for savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. The Magazine Show with Robina Khan.
2: Like a radio.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02 03963 5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: This Eid ul Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit Western Union. Union.com. This Eid, send more than money, send joy. Western Union makes money from currency exchange.
6: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
7: You mean Subtle Travel?
6: Yes, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
7: एक बार आजमाइए जरूर Subtle Travel.
6: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
7: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
8: Call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0161 250 1250. That's 0161 250 1250.
9: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
10: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
9: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
10: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
9: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
10: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
9: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
11: Mom, have you bought some of those delicious noodles?
12: You mean Koka, the king of noodles? Koka means delicious. Variety of flavors available in Koka packet, Koka cup and Koka bowl noodles. Suitable for vegetarians and halal approved. The king of noodles, Koka noodles, packets, cups and bowls, now available everywhere in the UK.
13: Chai break ho ya busy work day, sabko chahiye ek perfect cup of chai.
14: Aur ab Royal Chai laaye hain smart solution for your business.
13: Get a Royal Chai vending machine free. Perfect for cafes, restaurants, offices, shops, petrol stations or community spaces.
14: Rich, authentic taste every single time.
13: Royal Chai, brewed for business.
14: Email now, info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
1: Bradford Mellor.
15: 1st and 2nd of August. Exclusive radio partner, Leica Radio. Rizcan, next with Drive.
16: Leica Radio.
15: Leica Radio, Greater Manchester. We are the Leica Radio Network, now with 3 Asian radio stations in the UK.
0: और इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से रुबीना खान को इजाजत दीजिए. बहुत शुक्रिया जहां कहीं आपने आज का प्रोग्राम सुना. अब एक बहुत ही खूबसूरत बल्कि 2 बहुत खूबसूरत गीतों के साथ आपको छोड़े जाऊंगी और मेरे बाद यहां होंगे जय और मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट मंडे. लेकिन उससे पहले सैटरडे भी अंकुर को कवर करते हुए मुझे इजाजत. बाय फॉर नाउ.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू
1: ऑन द 5th of June. This is Laika.

0: This is Leica Radio.
1: थैंक यू सो मच टू मैसेज दैट आर कमिंग इन. थैंक यू सो मच वजाहत भाई. और आप पूछ रहे हैं नए प्रेजेंटर हैं या जाजी जे हैं. जाजी जे नहीं हैं, जाजी जे जबरदस्त प्रेजेंटर हैं. लेकिन इफ यू रिमेंबर मी फ्रॉम ओल्ड डेज, आई नया प्रेजेंटर तो नहीं हूँ, पहले भी प्रेजेंट कर चुका हूँ एज इंसान रेडियो पे. तो दैट्स व्हाई आई इंट्रोड्यूस मायसेल्फ टू यू वजाहत भाई एंड ऑल द लवली लिसनर्स. दिस इज जे फॉर्मली फ्रॉम एज इंसान रेडियो मिड मॉर्निंग शो साचा जे शो. सो आपको मैंने क्या बता दूँ क्विकली. कीप योर मैसेज कमिंग इन 0773 40 30 20. और अब हम थोड़ा सा ताल से ताल मिलाते हैं. कीप लॉकडाउन एशियन एशियन साउंड राइट सॉरी कंफ्यूज मी वजाहत भाई. लाइक है रेडियो मैनचेस्टर 1377 963 AM एंड ऑन DAB डिजिटल. ताल से ताल मिलाते हैं इन द रीमिक्स.

0: दुभट्टा मेरा लता मंगेशकर की आवाज में गाना फ्रॉम द फिल्म पाकीज़ा 1972. थैंक यू सो मच ऑल द लिसनर्स लिसनिंग इन. 07 0340 30 20 इज द नंबर. दिस इज द ड्राइव टाइम शो विद योर होस्ट जय ऑन लाइक अ रेडियो मैनचेस्टर 1377 963 AM एंड ऑन DAB डिजिटल. थैंक यू सो मच टू वजाहत भाई एंड ऑल्सो एस जे हुज लिसनिंग एंड इज अ फेवरेट सॉन्ग एंड आई एम श्योर यू आर लिसनिंग एंड सिंगिंग अलोंग as was I in the studio. And that's why we're here with you until 7 PM. हम आपके साथ हैं और आपको हंसाते रहेंगे और गाना बजाते रहेंगे और आपके साथ गाते भी रहेंगे. We'll be singing and dancing with you. And it might not be sunny in the sky, but we will try to bring a little bit of sunshine into your lives through our energy and our music and a little bit of news as well. Keep it locked on Like a Radio Network.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: Quick look at the currency rates. USA today 1.34, India 128.71, Pakistan 375.59, Bangladesh 166.1, Sri Lanka 448.11 and Afghanistan is at 83.49.
2: Like Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. The new Asian sound for the Northwest. This is LIKA Radio, Greater Manchester.
2: LIKA Radio.
3: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Coach, Eurostar, your flight. Aap choose karo, apna style. Baki sab, Star Tours experience sambhal leta hai. Visit startours.co.uk.

0: Pepe's. Harissa Honey Melt. New at Pepe's for a limited time only. So Pepe-licious.
1: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
2: यू मीन सफल ट्रेवल?
1: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
2: एक बार आजमाइए जरूर सफल ट्रेवल.
1: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
2: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
3: कॉल सफल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250. दैट्स 0161 250 1250.
4: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
5: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
4: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
5: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking, or simply visit your nearest branch.
4: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
5: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
4: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
6: Mum always said, beta, clove and neem keep the mouth healthy. Now that same trusted wisdom comes from Baidyanath. Over 100 years of Ayurvedic legacy in Sindhayu toothpaste. Fresh breath, strong gums, pure herbal care. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK. Sindhayu, Ayurveda that fits your life.
7: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय.
8: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस.
7: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस.
8: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम.
7: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस.
8: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com. Limited offer. Terms and conditions apply.
9: Want magic in every bite? Grab Hira Foods. Superior spices, wholesome dals, chapati flours, oils, sauces, pickles, plus much more. Ingredients sourced from around the world, packed especially for you. Hira Foods, king in quality, king in taste.
0: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Seven stations, one podcast, one mobile app. Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 8222 or sales@leicamedia.co.uk.
10: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन लाइका गोल्ड रेडियो, लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर एंड लाइका रेडियो मिडलैंड्स पर.

0: The Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
2: मैं जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर, लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड ग्लोबली आप हमें सुन रहे हैं, हमारी वेबसाइट से सुन रहे हैं, आपने हमारा ऐप डाउनलोड किया, जो भी है आप और हम हैं अभी साथ. सो हम साथ साथ हैं. आई कैन नॉट प्ले दैट सॉन्ग क्योंकि वो हमारे इस शो का जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, इसमें तो वो नहीं बैठता. लेकिन हमारे इस शो में बैठते हैं आप और हम, और हम मिलकर एंजॉय करते ऑल द फैंटास्टिक मेलोडियस रेट्रो ट्रैक्स. वीकेंड वाला माहौल बन गया ना, मतलब आरजे अश्विनी अभी से डीजे अश्विनी बन गई क्या? अरे देखो अभी तो शो शुरू हुआ है. सभी लोग अपने अपने किस्से कहानियां मुझे बता रहे हैं एंड एवरीबॉडी इज सो हैप्पी. ना नॉस्टैल्जिया होता है ऐसे कि अरे हमारी फर्स्ट पेमेंट आई थी तो हमने क्या क्या किया था, है ना. तो अभी हमारे तो था, हमारे माँ बाप भगवान हैं तो माँ बाप के हाथ में हम लोग सभी पेमेंट देते हैं. मैंने एक्चुअली ये सवाल सैंडी जी से भी पूछा. मैंने कहा कि आपको जब पहला पेमेंट मिला आपने क्या किया, उन्होंने भी यही कहा कि मैंने अपना पेमेंट मेरी मम्मी के हाथ में दिया. एंड इट्स ऑलवेज फैंटास्टिक टू कैच अप विद सैंडी. जब हम यहाँ पे आके हमारी बैंटरिंग चलती है, उनको छेड़ने में मुझे बड़ा मजा आता है. एंड स्पेशली मैंने 50s के एरा में जिस तरीके से बात करते कि मैं वहाँ गई थी, तुम क्या कर रहे थे, कभी आप लोगों ने इसे ट्राई किया है? आई नो इट्स वेरी रैंडम एंड फनी, ट्राई करो. घर वालों से ना कभी तो एक अलग ही लहजे में बात करो, उनके और जो रिएक्शन हो ना, कहीं तो हिडन कैमरा रख दो और वो रिकॉर्ड करो. लिखिए अश्विनी का शो जब तक गाने सुन रहे तब तक ठीक है, ये क्या क्या करवा रही है अश्विनी. हाँ आई नो, आई ऑलवेज गेट दीज काइंड ऑफ फीडबैक फ्रॉम यू कि तुम ना शांति से हमें ये प्रोग्राम सुनने नहीं देती, रोज आके कुछ तो होमवर्क देती हो. मजा कैसे आएगा ना अगर हम साथ साथ मिलके ये प्रोग्राम ना बनाए तो.
0: ये है लाइका रेडियो, द इवनिंग शो विद अश्विनी.

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जल ले दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हो जाए
0: हो जाए।

0: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 31 मिनट्स पास्ट 7. और आप सभी का शो है एक्चुअली. मैं यहाँ पे आके ना मतलब गपशप करती हूँ, पर शो तो एक्चुअली आप सब चलाते हो. इतनी सारे प्यारे प्यारे आंसर्स, इतनी सारी किस्से कहानियाँ. मैं इसलिए कहती हूँ कि आई एम ब्लेस्ड एंड आई मीन ग्रैटिट्यूड कि आप सबसे मैं कनेक्टेड हूँ इस शो के द्वारा. एंड डेफिनेटली थैंक यू जाता है, ग्रैटिट्यूड जाता है टू लाइक अ मीडिया एंड स्पेशली राज एंड सैंडी. बिल्कुल उन लोगों का सपोर्ट, मतलब एक होता ना कि आपकी जिंदगी में आपके कुछ बहुत प्यारे लोगों से आप लोग मिलते हो एंड देन वो प्यारे लोग आपके सपोर्ट में हमेशा रहते हैं. ऑब्वियसली आपका हार्डवर्क होता है, आपका एक जज्बा होता है. सो आई एम श्योर आप सबके लाइफ में भी ऐसे लोग होंगे जो आपके लिए हमेशा तत्पर रहते हैं. अच्छा, संगीत हमारे जिंदगी का बहुत अहम पहलू है. तो किशोर कुमार फैंस, आप लोगों के लिए बढ़िया सी न्यूज है. गेट रेडी फॉर क्रेजी क्रेजी फॉर किशोर, अ स्पेशल म्यूजिकल नाइट फीचरिंग जॉय इंद्रानी, संजय विथ हिनल एंड 515 बैंड. इट टेक्स प्लेस ऑन फ्राइडे 19 जून एट द प्रिंस रिजेंट होटल चिगवेल एसेक्स. टिकट्स अवेलेबल एट eventbrite.co.uk और कॉल 02085145400. कितने प्यार से और आराम से मैंने नंबर बताया ना. एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर लाइका गोल्ड रेडियो. नेक्स्ट इज यादों की बारात. अरे आप लोगों ने बस एंजॉय करना है मधुमती से.
1: हेलो देयर, माय नेम इज दीप राजा एंड आई डू द वीकेंड ब्रेकफास्ट शो फ्रॉम 7 AM सैटरडेज एंड संडेज लाइका गोल्ड इन लंदन, द मिडलैंड्स एंड मैनचेस्टर.

0: मिला लेंगे घड़ियां। देखते हैं टाइम कितना हुआ है। It's 45 minutes past 7. आप सभी ने ट्यून किया है Like a Gold Radio in London and Like a Radio in Greater Manchester. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी। मेरे जो प्यारे प्यारे साइलेंट लिसनर्स अभी भी शांति से सोच रहे हैं और अपने ही मन में मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। व्हाट्सएप नंबर आपकी सेवा के लिए ही रखा गया है। अरे अगर ट्यून इन किया है तो चलिए भाई आइए, जरा हमें भी अपने जीवन के किस्से कहानियां सुनाइए। इसीलिए तो ये शो है, फैमिली वाला शो है। गाने बढ़िया चल रहे हैं, गपशप चल रही है। फैमिली के साथ में करते क्या है, हम गपशप करते हैं ना, अपनी चीजें शेयर करते हैं। चलिए दो फैंटास्टिक ट्रैक्स आपके लिए लाइंड अप हैं, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए द इवनिंग शो विद अश्विनी।
1: अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीकनाइट्स।

0: वेलकम, दिस इज द सेकेंड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. मजा आया, मस्ती भरे गीत भी थे ना. पहला गीत तो अरे बाप रे, कितने सारे मैसेजेस सोनू निगम की आवाज में संघर्ष फिल्म से सुनाया आप सभी को मुझे रात दिन. देखिए जो हमारी मेंटल स्टेट होती है ना, उस स्टेट के हिसाब से हम गानों को रिलेट करते रहते हैं. नेक्स्ट वॉल्स, हमको तुमसे हो गया है प्यार, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, मुकेश जी और लता मंगेशकर की आवाज में अमर अकबर एंथनी, विच वॉज रिलीज इन 1977, उस फिल्म से सुनाया ये गीत. अच्छा, कभी कभी मैं थोड़ा फास्ट बोलती हूँ तो हमारे एक लिसनर है वो कहते हैं फटाफट बोलने वाली अश्विनी. आप लोगों ने सबने मुझे इतने प्यारे प्यारे नाम दिए, मुझे बड़ा मजा आता है. अच्छा, नाम दिए तब तक ठीक है, फिर आप ना एक तो यम्मी यम्मी डिशेज जो आप डिनर में खाते हो उसकी मुझे फोटोज क्यों भेजते हो? क्या आपके सच में ध्यान नहीं आता कि मेरे भी सलाइवरी ग्लैंड्स यहाँ पे एक्टिव हो जाते हैं? हाँ, ऐसी बात नहीं कि मैं खा पी के नहीं हूँ, मैं अच्छे से खा पी के आई हूँ. दिनेश जी ने पूछा कि अश्विनी आज क्या बनाया, तो आई मेड मूंग दाल की खिचड़ी टुडे. देखिए द बेस्ट पार्ट ऑफ फैमिली शो इज कि हम लोग कितने सारे मुद्दों पे बात करते हैं ना, कि खाने में क्या बनाया है, फिर छोटी छोटी टिप्स एक दूसरे को देते हैं, गाने किसको कैसे पसंद है, किस गाने से किसकी क्या स्टोरी है, बहुत सारी बातें होती. इसीलिए तो मैं कहती हूँ कि भाई ये शो जो है ना, ये आपका अपना शो है. मैं तो बस आके यहाँ पे माइक पे बैठती हूँ, आप लोगों के साथ मैं गुफ्तगू करती हूँ और अच्छे अच्छे गीत पूरे तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करती हूँ. मेरी एक बहुत ही प्यारी सहेली है दिव्या अग्निहोत्री, जो इंडिया में रहती है. आज उनका है बर्थडे. शी फॉलोज मी ऑन माई इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम इज रेडियो वाली अश्विनी. तो काफी समय से मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो करती है. उन्होंने कहा कि दीदी, शी कॉल्स मी दीदी, एंड शी इज लाइक दीदी क्या आप मेरे लिए आज कोई सॉन्ग प्ले करेंगे, हमको तुमसे हो गया है प्यार एंड मुझे रात दिन. सो ये दोनों गीत आपके लिए दिव्या, एंजॉय करो. एंड देखिए कई बार हम ऐसे स्ट्रेंजर्स के साथ में कनेक्ट होते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया एंड ड्यू टू आवर वर्क. जैसे आप सभी मेरे लिए है स्ट्रेंजर, मैं आपके लिए स्ट्रेंजर, लेकिन म्यूजिक जो है आपको और हमको लाया है करीब. एंड दिस शो द इवनिंग शो विद अश्विनी, जैसे मैं हमेशा आप सबको कहती हूँ कि भाई पूरा सप्ताह निकल जाता है, दिस इज थर्सडे, अब थ्रिलिंग थर्सडे आप और हम मना रहे हैं अभी, तो पूरे सप्ताह में ऐसी कुछ बात हुई है जो आपके दिल को चोट दी है, कहीं ना कहीं आप हर्ट हुए, बिल्कुल दुख दर्द पीड़ा में उसे टर्न ना करें. इन शॉर्ट मुझे बताइए, इफ देयर इज एनी रेंट बताइए यहाँ पे, इफ आई कैन हेल्प यू आई विल डेफिनेटली हेल्प यू विद दैट सॉल्यूशन. अब धीरे धीरे हम चल रहे हैं आगे. वॉल्यूम तो मैं कहूँगी थोड़ा ना अप रखो आप, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग गीत है यहाँ पे.
1: Classic Throwback is brought to you by Leica Gold 2. Bollywood classics non-stop on the new Leica Gold 2. Available at LeicaRadio.com, via Alexa, or by using our Leica Radio mobile app. This is the Leica Radio Network, across London, Manchester and the Midlands. SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: For £1, you'll get 128.4 Indian rupees. Send money to India via SBI Yono app or branch before end of June and be in to win a £75 voucher every day when you spend over £1,000, and also 1 gram gold coin every week when you're sending over £2,000. Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.

0: बैनर उदास की आवाज में सुनाया आप सभी को कुर्बानी फिल्म से ये गीत। इसमें जो वॉट एवर दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज, आई डोंट नो व्हाट्स दैट नेम ऑफ द, व्हाट्स द नेम ऑफ दैट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जे टिंगे टिंगे टिंगे टिंगे जो ये आते हैं ना म्यूजिक तो मुझे तो नहीं पता वो क्या है, बट आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ये गाना ना हमारे जहन में रह जाता है ना। ओके सो जरा ऐसे कुछ जॉब्स के बारे में आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहती हूँ जो कभी एग्जिस्ट हुआ करते थे। खैर ये वाला जो है ये अभी इट माइट बी इन सम ऑफ द एरियाज, मिल्कमैन हु यूज्ड टू ड्रॉप मिल्क की बॉटल्स एट योर डोरस्टेप्स, अभी भी कुछ जगहों पर हैं ऐसे लोग जो सीधे डेयरी से मिल्क लेके आते हैं, वो पूछते हैं। आई थिंक आप सबके यहाँ पे भी ऐसे हुआ होगा कि आए होंगे ये मिल्क जो बॉटल्स में मिलती है कि भाई हम जो है फ्रेश लाते हैं, वी आर फार्मर्स एंड वी ब्रिंग मिल्क फ्रॉम आवर डेयरीज, तो ये वाला जो काम था वो अभी काफी कम दिखने लगा है। रीड न्यूज अलाउड इन फैक्ट्रीज सो वर्कर्स कुड एंड्योर द शिफ्ट, तो ये लेक्टर हुआ करते थे, इन्हें लेक्टर कहा जाता था, ये लोग पहले होते थे। पिन सेटर रीसेट बोलिंग पिन्स बाय हैंड व्हाइल बॉल्स केप्ट कमिंग, ये पहले हुआ करता था जॉब। नॉकर अपर गॉट पेड टू वेक वर्कर्स बिफोर अलार्म क्लॉक्स वर चीप, मतलब जाओ और हर खिड़की पे ठक ठक ठक उठो जागो। इसके बाद लीच कलेक्टर्स वॉक्ड थ्रू मार्शेस टू कलेक्ट लीचेस फॉर डॉक्टर्स, कितनी वैरायटी ऑफ जॉब हुआ करते थे ना उस जमाने में, आज आप और हम कितने कंफर्ट्स में रहते हैं है ना। लैंप लाइटर्स लिट स्ट्रीट लैंप्स वन बाय वन बिफोर इलेक्ट्रिक लाइट टुक ओवर, माय गॉड पूरी स्ट्रीट्स पे लाइट लगाना कितना लंबा, इनका वॉक कितना होता होगा, एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं ना जिम में जाने की। आइस कटर्स तो सॉड आइस फ्रॉम फ्रोजन लेक्स इनटू ब्लॉक्स बिफोर रेफ्रिजरेटर्स वर एग्जिस्टेड। ह्यूमन कंप्यूटर डिड कॉम्प्लेक्स मैथ्स बाय हैंड बिफोर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स एग्जिस्टेड। टेलीग्राफ ऑपरेटर्स टैप्ड मोर्स कोड बिफोर फोन्स वर फोन्स मेड, या फोन कॉल्स वर मेड, उसके पहले ये हुआ करता था। And oh my god, this is a torture. Searched sewers for coins before poverty made it worth. इतने अजीब अजीब तरीके के जॉब होते हैं, कुछ कुछ जॉब्स हैं अभी भी बहुत अजीब जॉब्स हैं, पीपल गेट पेड वेल फॉर देम, उसके बारे में कभी और बात करेंगे। नेक्स्ट ट्रैक जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ बहुत ही प्यारा ट्रैक है, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाज में आराधना फिल्म से लाई हूँ आप सभी के लिए गीत। मंडे टू फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ, दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर।
1: Get all the latest travel updates for Manchester at Breakfast and Drive. This is the Leica Radio Network, the largest Asian commercial radio network in the UK. Broadcasting in Greater London, Greater Manchester and the Midlands. Tune in wherever you are in the world by downloading the Leica Radio mobile app. Listen live or listen back to your favorite shows. Or log on to leicaradio.com and listen via the website. If you like what you hear, do tell us. Email us info@leicaradio.com. Or you can advertise on the Leica Radio Network by emailing sales@leicamedia.co.uk. This is Ashwini, in for Anisa Nazir, on The Evening Show. Like a
2: radio. This Eid ul-Azha, share the joy no matter the distance. Whether you're near or far, sending support is just a tap away. Send money with Western Union. Enjoy zero transfer fees on your first online transfer to bank accounts or mobile wallets. Prefer to send money in person. Western Union is also available at participating post offices, Euro Change and other retail partner locations. Download our app today or visit westernunion.com. This Eid, send more than money. Send joy. Western Union makes money from currency exchange.
3: Badhiya service se mala mal travel aur bachat karane mein bemisal travel.
4: You mean Subtle Travel?
3: Yes. देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर,
4: एक बार आजमाइए जरूर साउथ हॉल ट्रेवल।
3: 7 दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
4: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए।
5: कॉल साउथ हॉल ट्रेवल 24 आवर्स अ डे 7 डेज अ वीक ऑन 0161 250 1250, दैट्स 0161 250 1250।
1: हेरल्ड न्यू वर्ल्ड ऑफ
6: have eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free 2025 catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldpackaging.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldpackaging.com.

0: सोमवार है,
1: है,
0: आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
2: Feel Good Track was brought to you by LycaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Lyca Radio app and website on LycaRadio.com. Listen live or listen back.
3: This is Lyca Radio.
4: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 37 मिनट्स पास्ट 8। आज सभी ने ट्यून इन किया द इवनिंग शो विद अश्विनी। इमोशन ऑफ द डे, दैट इज थ्रिलिंग थर्सडे, है ना। तो थ्रिलिंग थर्सडे में कोई थ्रिलिंग सा गीत आप लोगों के लिए। चलिए किशोर कुमार की आवाज में आन मिलो सजना से जवानी और दीवानी।
3: लाइका रेडियो,
2: Ashwini in for Anisa Nasir for the evening show.

0: इमोशन ऑफ द डे
1: Like a radio. Hey, this is Riz Khan and I'm taking you home on drive. Weekdays 4 till 7 p.m. at Like a Radio Greater Manchester.
2: Like a Extra podcast update.
3: पॉडकास्ट नंबर पॉडकास्ट बाहर आ चुका है पॉडकास्ट बाहर आ चुका है एपिसोड बाहर आ चुका है ओके द न्यू एपिसोड इज आउट. कभी कभी ना जो ट्रांसलेट है ना वो नॉर्मली नहीं करना चाहिए. ओके सो पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 19 इज आउट. लिव इन रिलेशनशिप होस्टेड बाय आर रेडियो वाली. आर लिव इन रिलेशनशिप स्टिल अ टैबू इन आर कल्चर. आर लिव इन रिलेशनशिप जस्ट अ ट्रायल राउंड बिफोर मैरिज. लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट पे बहुत सारे ऐसे मुद्दों पे बात हुई है विच इज अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
2: Leica Extra is here. This is Ashwini in for Anisa Nazir on the evening show.
4: Leica
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
6: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
6: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
6: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorised by the PRA and regulated by the FCMPRA.
7: CTV and C5 proudly present Hamari Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamari Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner. Like our radio.
8: This Saturday, the £12 million Lotto jackpot must be won.
9: Must be won.
10: Must be won.
11: Must be won.
12: Must be won.
8: Yes, the Lotto jackpot must be won this Saturday. What are you waiting for? Get your ticket today. Lotto from the National Lottery. It could be you. Rules and procedures apply. Players must be 18 or over.
2: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Get in touch. Advertise on Leica Radio Greater Manchester, the largest Asian commercial radio station in the northwest of England. Call now 0161 250 8222 or sales at leicaradio.com.
1: This week's Like Extra podcast, Radio Valley talks to special guests about being South Asian and in a living relationship.
13: It's always a gamble. Life is a gamble. Marriage is a gamble. Relationships are as well. It can change within the year you meet somebody. Yeah. It can change within the year after you get married. It could change 25, 26 years after you're married. Anything can happen. Anything is possible.
2: Like Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights. Leica Radio. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
3: For £1, you'll get 128.49 Indian rupee, 373.46 Pakistani rupee, 450.07 Sri Lankan rupee, 164.69 Bangladeshi taka, 85.90 Afghani.
4: Leica Radio.
2: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: Leica Radio.
2: The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Leica Radio.
3: Gold is currently trading at £107.13 per gram.
2: Gold Rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
4: Like a radio.
3: टिक करते हुए घड़ी कह रही है एक बार जरा टाइम चेक कर लीजिए अश्विनी जी. तो टाइम चेक अभी इट्स 47 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है द इवनिंग शो विद अश्विनी. एक से एक गाने पूरी यहाँ पे प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए जो लगी है. आप सभी गानों को पसंद कर रहे हैं. इस आवर के आखिरी गाने तक आप और हम पहुंच रहे हैं. लेकिन उसके पहले बात करते हैं. अ ब्राइट ऑरेंज बर्ड वॉज फाउंड बाय द रोड साइड अनेबल टू फ्लाई सो अनयूजुअली कलर दैट रेस्क्यूज सस्पेक्टेड इट वॉज अ रेयर एक्सॉटिक स्पीसीज. हाउएवर वेट्स एट यूके वाइल्ड लाइफ हॉस्पिटल सून डिस्कवर द मिस्ट्री बर्ड वॉज एक्चुअली वेरी कंफ्यूज सीगल कंप्लीटली कोटेड इन करी पाउडर. और वो करी पाउडर की वजह से वो टिक्का मसाला का जो पाउडर था वो उसका पूरा मसाला इस बर्ड के ऊपर लग चुका था. थैंकफुली असाइड फ्रॉम स्मेलिंग लाइक टेकआउट द बर्ड वॉज हेल्दी आफ्टर अ केयरफुल बाथ इट रिवील्ड इट्स नेचुरल व्हाइट फेदर्स एंड वॉज रिलीज बैक इन टू द वाइल्ड. द अनयूजुअल रेस्क्यू ये अभी की बात नहीं, ये काफी साल पहले की बात है. लेकिन स्टिल पूरा करी में एक बर्ड मतलब वो उसका कलर ही चेंज हो गया. कहाँ ये मतलब कहाँ किसी पतीले में जाके नहा के आ गया था सीगल, क्या कर रहा था पता नहीं. खैर हमारे यूके में करीज बहुत मिलती हैं क्योंकि काफी डोमिनेटेड है करी वाली डिशेस यहाँ पे. तो आप यहाँ पे रेगुलरली करी वाली डिशेस बनती हैं या होता है कि शाम के समय जरा हल्का फुल्का खाना वाना रहता है एंड करीज जो है स्पेशली वीक में से एक बार ही बनती हैं, है ना? या फिर वी आर मोर फॉन्ड ऑफ सैलेड्स या पास्ता, है ना? हर घर में अलग अलग होता है. इसके बारे में बताना चाहते हैं जरूर बताइए. लास्ट ट्रैक जो मैं आपको इस आवर का सुना रही हूँ दैट इज लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर की आवाज में क्रोधी विच वॉज रिलीज इन 1981 चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा. ये मेवा मुझे ना बचपन में बड़ा फैसिनेटिंग लगता था. मेवा इज लाइक मेवे के गुलाब जामुन भी बनते हैं, राइट? मैं काफी खाने के मूड में आ गई हूँ ना अभी, उसी की बातें कर रही हूँ. नेक्स्ट ट्रैक ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर.
2: दिस इज लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर फॉर्मली नोन एज एशियन साउंड रेडियो. दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर ऑन द इवनिंग शो.
0: बढ़िया सर्विस से माला माल ट्रेवल और बचत कराने में बेमिसाल ट्रेवल.
9: यू मीन सॉफ्टल ट्रेवल?
0: यस, देश विदेश में दूर दूर तक मशहूर.
9: एक बार आजमाइए जरूर सॉफ्टल ट्रेवल.
0: सातों दिन किसी भी वक्त फोन मिलाइए और चाहे घर पर टिकट डिलीवर कराइए,
9: फिर दुनिया में कहीं भी घूम कर आइए.
10: कॉल सॉफ्टल ट्रेवल 24 hours a day, 7 days a week ऑन 0161-250-1250. दैट्स 0161-250-1250.
5: Transfer money home and turn every transfer into a chance to win while making your money go even further with SBI UK.
11: Transfer £1,000 or more in a day to enter our daily draw for a £75 voucher.
5: Transfer £2,000 or more in a week to enter our weekly draw for a 1 gram gold coin.
11: Transfer now using the Yono SBI UK app, online banking or simply visit your nearest branch.
5: And that's not all. Enjoy zero transfer fees and competitive exchange rates.
11: More value, more rewards, more reasons to choose SBI UK.
5: Offer valid from the 4th of May to the 30th of June 2026. Entries open to UK residents 18 plus. No entry fee and purchase required. Terms and conditions apply. Visit sbiuk.statebank for details. SBI UK Limited is authorized by the PRA and regulated by the FCNPRA.
12: वेडिंग्स सेलिब्रेशंस कॉर्पोरेट इवेंट्स रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं. परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं. 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए. फॉरन का फोन मिलाए 0208890880 और विजिट ragasan.com. लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन.
14: खाकरा क्रंच भाकरी मंच चिक्की स्वीट पापड़ बीट पिकल्स हीट ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
15: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स खाकरा नमकीन पापड़ पिकल्स चिक्की पॉट मील्स एंड मच मोर.
14: जयमिन फूड्स देसी क्रेविंग्स अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
16: When you notice something wrong, it tends to grow and eventually take over to the point you can't really think of anything else. If something in your body doesn't feel right, the thought it could be cancer can play on your mind. Tests could put your mind at rest. Finding out sooner is always better. Your NHS wants to see you. Contact your GP practice.
2: Download the Leica Radio mobile app to listen live and listen back to Leica Radio Greater Manchester, formerly known as Asian Sound Radio. 7 stations. 1 podcast. 1 mobile app.
17: Advertise on Leica Radio Network, offering the largest Asian radio and digital content in the UK. Call 0161 250 822 or sales at leicamedia.co.uk.
18: The Evening Show with Ashwini.
17: Another huge giveaway is coming.

0: वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी. दिल तो पागल है, बिल्कुल जब आप प्यार में होते हैं तो पागल तो वैसे ही हो जाते हैं, तो दिल तो पागल है. ये सुनते लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज में सुनाया आप सभी को टाइटल ट्रैक. तो इस तरह से मनहर उदास की आवाज में आप तो ऐसे ना थे. जी हाँ, लोग बदलते हैं, चीजें बदलती हैं, लाइफ चेंज होती रहती है. अभी अगला गाना जो आपको सुनाने वाली हूँ आशा भोसले की आवाज में, नमक हलाल फिल्म से. मध्यम ही आवाज रखी क्योंकि थर्ड आवर है, आसपास के लोग सो रहे होंगे तो बताएंगे क्या यार अश्विनी का शो जो तुम सुनते हो. सो क्या होता है, शो या अश्विनी का शो सुनते हो तो इतना शोर करते हो तुम.
1: अश्विनी ब्राइटनिंग अप योर वीकनाइट्स.

0: Good Track was brought to you by LaikaRadio.com. We're live across Greater Manchester and online via the Laika Radio app and website on LaikaRadio.com. Listen live or listen back.
1: This is Laika Radio.
0: This is Laika Radio.
2: Hi, मैं हूँ रुबीना खान. सुनिए मुझे लाइका रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर में दोपहर 1 से 4 बजे तक द मैगजीन शो में.
0: दिस इज अश्विनी इन फॉर अनीसा नासिर ऑन द इवनिंग शो.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
4: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
6: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
5: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
6: And you didn't pay those massive roaming charges?
5: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
7: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100+ countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: CTV and C5 proudly present Hamare Ram, produced by Felicity Theatre. India aur Dubai mein houseful shows ke baad, ab pehli baar London mein. Dekhiye Ashutosh Rana ko as Ravan aur Rahul R. Bhuchar ko Prabhu Shri Ram ke roop mein. Ramayan ki undiscovered stories live on stage. 9 se 12 July, Eventim Apollo, Hammersmith. Hamare Ram. Book your tickets now. Visit www.eventimapollo.co.uk. Exclusive radio partner, Laika Radio.
8: Pepe's Piri Piri is turning up the heat in Bolton. With grills fired up and ready to serve you flame-grilled Piri Piri favourites. Derby Street in Bolton. Pepe's Piri Piri. Definitely worth a visit.
0: Laika Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
9: For £1, you'll get 128.45 Indian rupee, 373.45 Pakistani rupee, 448.88 Sri Lankan rupee, 164.7 Bangladeshi taka, 85.18 Afghani.
1: Laika Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Laika. Download LemFi now. T's and C's apply. LYCA. This is Laika. The latest gold rate is brought to you by Hearty Hanks, your digital growth partner. This is Laika Radio.
9: Gold is currently trading at £107.13 per gram.
0: Gold rate is brought to you by Hearty Hanks, UK premier digital media agency, helping companies expand their digital footprint. Visit heartyhanks.com.
1: Laika Radio.
9: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है. इट्स 43 मिनट्स पास्ट 9. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. शो का नाम द इवनिंग शो विद अश्विनी. मंडे से फ्राइडे शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ. कल होगा फैंटास्टिक फ्राइडे, तो आरजे अश्विनी बन जाएगी डीजे अश्विनी, यानी फुल ऑन दंगा मस्ती यहाँ पे शुरू हो जाएगा। दंगा इज अ मराठी वर्ड, दंगा आई थिंक हिंदी में भी होता है ना, मतलब ऐसे फुल ऑन मस्ती रहने वाली है, बिल्कुल अपबीट सॉन्ग्स रहेंगे। तो खा पी के अपनी कैलोरीज बर्न करने के लिए तैयार रहिएगा, 3 घंटे पूरा मस्ती रहने वाला है। ओके, जैसे थोड़ा वीकडेज में मैं थोड़े से स्लो, थोड़े से बीट अपबीट, बट फ्राइडे इज ऑल अबाउट अपबीट सॉन्ग्स। And gold nights are overnight services there for people who are driving, who are working. नींद नहीं आ रही, लड़ झगड़ के मत सुनिएगा, क्योंकि फिर आपको गानों का मजा नहीं आएगा, आप लिरिक्स में खो जाओगे, म्यूजिक एंजॉय नहीं कर पाओगे। लाइक अ रेडियो 90s फॉर ऑल द किड्स, जो 90s में बड़े हो रहे थे उन सब के लिए। लाइक अ रेडियो पंजाबी इफ यू आर इंटरेस्टेड इन पंजाबी सॉन्ग्स, एंड लाइक अ गोल्ड टू। और हमेशा की तरह बस इतना ही कहूंगी, प्यार जिंदगी जीने के लिए काफी है, तो प्यार दो, प्यार लो, पावर तो किसी को बर्बाद करने के लिए चाहिए, है ना। आई एम श्योर आप लोग कोई भी अपने पावर का यूज नहीं करते होंगे, क्योंकि आप हैं म्यूजिकल फैमिली, है ना, और प्यार से आपकी पूरी जिंदगी अच्छे से निकल रही है। लाइफ बहुत सुंदर है, प्लीज उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें, कम्युनिकेट करें, जो भी चीज बोलना चाहे बोल दीजिए, आमने सामने क्लियर रखिए। ऑन दैट नोट आई हैव टू से प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लव यू ऑल, कल शाम मिलेंगे मस्ती मजा गपशप इन द इवनिंग शो विद अश्विनी।
0: ये है लाइका रेडियो।
10: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
11: Star Track of the Hour, sponsored by Star Tours. Tours by coach, Eurostar or flight. We give you the option, you choose what works best for you. That's the Star Tours experience. Visit startours.co.uk.

0: है जवानी तो इश्क होना है इन थिएटर्स नियर यू.
1: नेक्स्ट
2: द बिगेस्ट रोमांटिक सॉन्ग्स आर अप नेक्स्ट ऑन लव साउंड.
3: लाइक मैं हूं इब्ने ताबिश और मेरा आपका साथ रहता है रोजाना मिड मॉर्निंग शो में लाइक रेडियो ग्रेटर मैनचेस्टर से सुबह 10 बजे से 1 बजे दोपहर तक.
2: Leica Radio, Greater Manchester, on 963 AM and 1377 AM.

0: to Laika Radio 90s. 90s. On Laika Radio mobile app, laikaradio.com and Alexa. Play Laika Radio 90s.
1: This is the Laika Radio Network. Download the Laika Radio mobile app on your mobile devices. The radio network consists of Laika Radio Greater London, Laika Radio Greater Manchester, and Laika Gold Radio. Advertise today on Laika Radio Greater Manchester. Call 0161 250 822.
2: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवरटाइज करने के लिए कॉल करें लाइका रेडियो सेल्स ऑन 0161 250 8222 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
1: Bollywood romantic hits throughout the night. This is the love sound.